0: जी हाँ, ये राखी का गाना बहुत ही सुंदर मीठा गाना था। ये बहन और भाई के अटूट रिश्ते को समझा की इम्पोर्टेंस देता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। और जैसे कल रात को KBC में अमित जी बोल रहे थे, जो राखी जो एक बहन अपने भाई के रिश्ते पे बांधती है, उसका जो है सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि वो नॉट ओनली फिजिकल प्रोटेक्शन बट यू नो मेंटल स्ट्रेंथ टू हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम्स इन लाइफ। सो इट्स ए वेरी ओल्ड फेस्टिवल एंड इफ यू लुक एट माइथोलॉजी देखें अगर आप इंडिया की, तो उसमें तो जो सबसे पहले बोलते हैं, जो इंद्र भगवान ने को उनकी जो राखी बांधी थी, उन्होंने अपने पति को, उनकी पत्नी का नाम था इंद्राणी, उन्होंने बांधी थी। दैट्स द फर्स्ट एवर एज पर आवर स्क्रिप्चर्स। सो वी वॉन्ट टॉक मोर अबाउट इट। एंड मनीषा, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट?
1: Yeah, so yeah, Rakhi is a really important festival in for all Indians, and just celebrates and reinforces the bond between a brother and sister. And it's a fun festival. Everybody gets dressed up. Either they, when they're young, they're living in the same house, but when they get older, they either visit their brother or the brother visits the sister, and so on and so forth. There's exchange of gifts, of course, and exchange of mithai and sweets. So it's a very sweet and fun Indian festival.
0: You know, few in India back in those days, few days before everything gets hectic, rakhi milni shuru ho jati hai, mithai ki dukaan pe mithai, log plan karte hain. Agar kisi ka bhai bahar rehta hai to usko पहले हफ्ता दस दिन पहले राखी
1: लेता
0: है, तो मिल जाए, हाँ टाइम से मिल जाए, बाद में मिले पहुंचेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सो यू नो दोज आर द स्वीट मेमोरीज ऑफ राखी। और फिर यू सी लॉट ऑफ लेडीज ट्रैवलिंग बाय बस ऑन द राखी डे अर्ली इन द मॉर्निंग, भाई को जाना है, उसको राखी बांधनी है, देन ही हैज टू गो टू वर्क एंड ऑल। ओके, लेट्स,
1: सो दैट्स अबाउट राखी। So we today, listeners, we do have a full playlist, playlist which is made by me. But in addition, we will have your requests. So you could send in your requests and we will play them. So I'll start off with a request. This is a request from Beena Hotchandani. This is a request for Padma, Padma Bain, Padma Hiranandani, Padma Raichwad, as she's fondly called, is the original DJ of this show, Geetmala. And she started this show in the late 90s in this very station at WVKR. So, Beena would like to dedicate this song for Padma, and it's a nice prayer song from the movie Do Aankhein Baarah Haath.

0: जी हाँ, ये गाना लता जी ने अपनी आवाज़ दी थी, लिखा हुआ था भरत व्यास का, और इसका जो संगीत था, संगीत निर्देशक वसंत देसाई। ये बहुत ही प्यारा सा ऐसा गीत है जिसमें आप जो क्रिएटर है, जो उससे अपना यू नो पीपल इन ऑल फेथ्स एंड रिलीजन्स गिव इट टू यू नो वी आर योर पीपल टेक केयर ऑफ अस, सो इट्स वेरी सिंबॉलिक आई थिंक यूनिवर्सली आई वुड से।
1: Yeah, it's kind of a universal song. No matter what your faith is, you believe in one Malik or one Creator or one God. So beautiful choice, and thank you, Beena, for the request. The next song is a request coming from Aruna Jindal, and this is a song from the movie Hum. I think it's a 1990s movie, Amitabh Bachchan, 80s or 90s, and this is lot of singers. It's more of a chorus with Sudesh Bhosle, Mohammad Aziz, Udit Narayan and Alka Yagnik. So let's enjoy this song again, a nice collective kind of song of love and brotherhood. So let's enjoy this.
2: Bum chick chick bum, chick bum bum bum, chick chick bum.

0: जी हाँ, ये बमचिक बम क्या मतलब है इसका मनीषा?
1: इट्स नॉट अ मतलब का वर्ड, इट्स जस्ट लाइक अ व्हाट डू यू कॉल, नॉट अ म्यूजिक थिंग,
0: राइट? इट्स अ स्लैंग, इट्स अ फ्रेज. जैसे इसका इसे गूगल बोलता है इट्स अ नॉनसेंस रिदमिक कोरस फ्रेज इन म्यूजिक डांसिंग एंड लाइट हार्टेड स्लैंग. जैसे अभी एक टीवी पे प्रोग्राम देख रहे थे ना, दिल्ली 6 के जो गाने हैं उस पर लिखा था कि उसने प्रसून जोशी ने बोल रहा था जो. सो इट्स लाइक सिमिलर फ्रेज. एंड आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स टू अनाउंस. फर्स्टली आवर द प्रोग्राम विच वॉज बिफोर अस पोलका, दे आर वेरी पंक्चुअल, वी ऑलवेज अप्रिशिएट. राइट एट 11:59 दे से गुड बाय एंड हैंड ओवर द स्टूडियो टू अस. एंड आज के प्रोग्राम की लिस्ट क्या है मनीष, क्या थीम है आज?
1: तो या आई मीन इट्स समटाइम्स देयर इज नॉट अ रियल थीम, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ थीम. सो टुडे आई चोज सॉन्ग्स फ्रॉम मूवीज विच वर रिलीज्ड इन 1990. सो लिसनर्स, दैट्स माय प्लेलिस्ट फॉर टुडे. 1990 वाज काइंड ऑफ अ पिवोटल ईयर, आई विल टेल यू दैट लेटर ऑन. But it was a good year, 1990. There were a lot of good Hindi movies released during that time. And the landscape of Hindi cinema was changing a little bit in the 1990s, because India was changing in the 1990s. There was that liberalization policy coming in, and people were getting more westernized, and there was the internet and cell phones. So 1990 was a good year. So let's hear this first song, which is from the 1990 movie Dil. And I think the 1990s, kind of the actress who dominated the 1990s and especially the year 1990 was Madhuri Dixit. So this is a song which is from the movie Dil. The actors are Amir Khan and Madhuri Dixit, and had great songs. We have played those songs before. This is one of those songs, and it's sung by Anuradha Podwal and Udit Narayan.
0: जैसे मनीषा तुमने क्या इंटरनेट का बोला ना, तो उसमें टिम बर्नर्स-ली लेड द foundation and the groundwork for the WWW at CERN in 1990. That's when.
1: Oh, I didn't know that.
0: Yeah,
1: that's
0: so
1: cool.
0: That's very important. You know, that's how the world has changed forever.
1: Okay.
0: As AI is changing it.
1: So let's hear this song.

0: जी हाँ, ये गाना था थोड़ा फास्ट पेस, थोड़ा फुट टैपिंग वाला, लेकिन अच्छा था, पसंद आया।
1: हाँ, एक काफी मतलब पोइट्री वाले शब्द नहीं थे, बट इट वॉज लाइक व्हाट वी कॉल अ चालू सॉन्ग,
0: लाइक बमचिक बमचिक।
1: या एग्जैक्टली, बट इट वॉज आई थिंक आई डिडंट मिस किशोर कुमार बिकॉज अमित कुमार वॉज सिंगिंग जस्ट लाइक किशोर कुमार।
0: राइट राइट। जी हाँ, अगर हमारे सुनने वाले श्रोतागण ये सोच रहे हों या आश्चर्य दे रहे हों, आश्चर्यचकित हों कि ये मनीषा और अरुण ने तो लास्ट वीक किया था बहनों के उस पे थीम पे प्रोग्राम, आज वापस कैसे आ गए ये। सो जस्ट फॉर FYI कि जिस आरजे ने आज का शो करना था उनको कुछ लास्ट मिनट पे कैंसिल करना पड़ा, वो आ नहीं सकती थी, तो मनीषा ने बोला अच्छा आई विल स्टेप अप, मैं अपना ये विल कैरी ऑन द टॉर्च एंड डू ए लाइव शो। सो मनीषा ने 1990 के गाने चुने हैं एंड लेट्स सी अगला गाना कौन सा है।
1: अगला गाना फरमाइश है। सो या आई मेड दिस लिस्ट स्लाइटली लास्ट नाइट एंड द नाइट बिफोर, बट लेट्स इट्स ऑल गुड, इट्स फॉर द लव ऑफ म्यूजिक दैट वी डू इट, एंड आई होप ऑल आई एम श्योर आवर लिसनर्स अप्रिशिएट listening to these songs. So listeners, this is again a request from Jane Auntie. This is from Ravi Auntie, who is a fond and loyal Geetmala listener. And I think this is a song from sung by Lata Mangeshkar and Hemant Kumar. Ye farmaish hai Ravi Jain ki, aur gana hai Ae Neele Gagan Tale Pyar Hum Karein. I've not heard this song, Ravi ji, but I think this is the song you are requesting. It's a movie Badshah. So let's enjoy this request.

0: Very excellent choice, Raviji. Beautiful song. This is from, I looked up, 1954 movie, Badshah.
1: Yeah.
0: Black and white movie.
1: Next time I Jane Aunty se milunga na to puchunga, aap jab apne young age mein jo gaane sunte the, kahan sunte the, radio pe, aur kaun se theater mein jaake picture dekhte the, aapki jo pasand hai na gaano ki, बहुत ही सुरीली मीठी लो पिच वाले गाने होते हैं. आई रियली लाइक इट.
0: या रियली ग्रेट सॉन्ग्स, वेरी नाइस सॉन्ग, एंड आई एम श्योर आवर लिसनर्स एंजॉयड इट टू. एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अ 1990s मूवी. दिस इज अ मूवी किशन कन्हैया. एंड एज आई वर टॉकिंग अबाउट 1990s, Amir Khan, Madhuri Dixit were the reigning stars, and also Anil Kapoor. So this is from a movie, Kishan Kanhaiya, which is, the actor is Anil Kapoor.
1: And Kishan Kanhaiya ke naam se jo main zarur bolna chahunga, Draupadi ne Lord Kishan ke rakhi bandh ke got eternal protection. So that's a very important, bahut hi mahatvakanshi kahani hai hamare liye. बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है.

0: जी हाँ, 1990 में कुछ और हिस्टोरिकल बातें भी हुई थी। एक था उसमें जर्मन यूनिफिकेशन।
1: ऑलराइट लिसनर्स, थैंक यू एमी एंड विक्रम फॉर दिस लवली सॉन्ग। एंड इट्स 12 noon, 12 to, मिडवे बिटवीन आवर प्रोग्राम। एंड लिसनर्स, दिस इज द गीतमाला शो कमिंग टू यू फ्रॉम WVKR इंडिपेंडेंट रेडियो स्टेशन फ्रॉम वैसर कॉलेज, Poughkeepsie, New York. Phone number here is 845-437-7178. You can tune in at wvkr.org on the internet or on the radio at 91.3 FM. And listeners, another important message, is that we have our annual fund drive coming up on September 19th, the WVKR pledge drive. So all listeners, all Geetmala listeners, friends, Geetmala family, Geetmala ke saathi, please call in that day to pledge something for Geetmala to get the station going. This is an important station for all of us in our community. We get to hear non-stop music from our hometown, from our home country. So I know all of you are great supporters of Geetmala. So please call in on September 19th for our annual pledge drive. I'm counting on all of you.
0: ये आपका फेवरेट प्रोग्राम है, आपका चहेता प्रोग्राम है, आपको संगीत पसंद आता है, आपको हमारी बातें पसंद आती हैं, प्लेलिस्ट पसंद आती हैं, तो उस दिन संकल्प लीजिए कि आप पैसे देंगे, डोनेट करेंगे। अगर उस दिन किसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी हमें या उससे पहले बता सकते हैं।
1: ऑलराइट लिसनर्स, वी आर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम। वी जस्ट हैड अ लवली रिक्वेस्ट सेंड फ्रॉम एमी फ्रॉम द मूवी वॉटर। एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल song Amy sung so beautifully by Sadhna Sargam. I know you had said it's A.R. Rahman, so the music is from A.R. Rahman, but the song is sung by Sadhna Sargam. So Arun, you're talking about 1990, so hold that thought after our next song. So let's play our next song, which is again a 1990 song. This is from a movie, Baagi. And this was, again, 1990 was the year when Salman Khan debuted in movies. And this was his first movie. So this is a song from the movie Baagi. And it's Salman Khan. And I think the actress is Nagma. And song is sung again by Amit Kumar and Anuradha Podwal.

0: The next song is a dedication. It's, I think, the anniversary of Malhotra's, Asha and Suraj Malhotra. So happy anniversary to both of you. This song is dedicated to you.
1: Yeah, Manisha and Arun, aapke anniversary pe aapko bahut bahut badhai dete hain, and wish you many more to wedding anniversaries to come. हम ये गाना बजाने जा रहे हैं. लगता तो है क्लिशे है, लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित गाना है ये. और वेडिंग एनिवर्सरी के टाइम पे आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी बेटर सॉन्ग देन दिस सॉन्ग.

0: हाँ जी, बरसात के ऊपर गाना था, इतनी बरसात यहाँ हो रही है, तो आई थॉट लेट्स हैव अ रेन सॉन्ग।
1: ये लेकिन ये गाना पहले सुना नहीं हुआ, और आज की जो आपकी जो सूची है ना, सूची यानी कि जो लिस्ट है, थोड़ी भिन्न तरह की है, यानी कि डिफरेंट टाइप की है। पता नहीं कैसे आपने चुने हैं इस बार के लिए गाने।
0: नहीं, लिस्ट तो कई तरह की हो सकती है, लिस्ट बनानी आसान थोड़ी है। तो मैंने 1990 चुना है। 1990 वॉज एन इम्पोर्टेंट ईयर इन आर लाइफ, इफ यू रिमेम्बर।
1: वॉज इट?
0: या वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। बिफोर दैट लेट्स प्ले अ सॉन्ग। दिस इज अनदर सॉन्ग विच वुड हैव बीन पद्मास चॉइस हैड शी कॉल्ड एंड रिक्वेस्टेड, बट दिस आई एम प्लेइंग ऑन बिहाफ ऑफ पद्मा। पद्मा लव्स एसपी बालसुब्रमण्यम। So this is a song from Padma Raichwad to all our listeners. This is again a 1990s movie, Jamai Raja, and sung by S.P. Balasubramaniam, and along with him is S. Janaki, and the music is by Lakshmikant Pyarelal, and the words, the lyrics are written by Javed Akhtar.